0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 a.m.

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई हैं। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मे।

सुनिए हाथ वैस गा, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास, मन्ने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पिछे।

मन कोय। मन्ने सुध होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम।

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होश

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: Greater London. This is Kajal on Breakfast. This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London, the Like a Group. Like a Gold, traffic and travel.
1: Good morning. Dorley Road continues to have an accident closure. This is north from Station Road to Redmead Road. Traffic is diverting for bus routes U4. Now, the A312, the parkway, just before the M4 at Junction 3 in Hayes South, there is slow traffic building already this morning. North Circular Road at Hanger Lane Gyratory, we've got slow traffic at Western Avenue. And the A13 up to 25 minutes westbound from Raynham to Barking and the Lodge Avenue flyover. Now, North Circular Road, Staples Corner to IKEA, busy but moving. And Central Line, faulty escalators. Underground station remains closed at St Paul's, and District Line points failure at Edgware Road. No service between High Street, Kensington and Edgware Road. And that's the latest traffic and travel.
2: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife. And little Freddy.
3: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
4: Yeah. Like a gold. Like a gold.
5: This part of the show is brought to you by Star Plus.
6: Previously known as Utsav Plus.
5: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. One performer.
6: Countless personalities.
5: A whole universe of entertainment.
6: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
5: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
6: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
5: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
8: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
9: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
10: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574 8410।
13: साउथ हॉल ट्रेवल। at all protected.
14: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
15: कृष्णना जन्मनो आनंद उत्सव एक रात एक अनुभव नंद आनंद
14: भयो जय करे 5th September at Wembley 6th September at Crawley tickets only £25 for tickets booking visit Eventbrite Skiddle Videorama or stardommedialtd.com
15: stall and sponsorship mate call 07940924667 exclusive radio partner Laika Radio Network
16: Mukesh aur Lata Mangeshkar ke evergreen gaano ki yaadon mein ek khoobsurat musical sham Pankaj Sodha presents hum to tere aashiq
17: hum to tere aashiq
16: Sweet memories of Mukesh and Lata with Sangeeta Melekar aur Mukhtar Shah live band ke saath 29th August Hedge and High School Harrow 30th August Woodmanston School South London dinner from 5 PM show starts at 7 PM for tickets and more information call Deepa on 07947561947
18: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं जिंदगी भर याद रह जाती हैं और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
0: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल ऑन लाइका गोल्ड

0: गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.com.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposables. Disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
5: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स। परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678।
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Be part of a historic grand opening.
11: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
11: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: सफर नया पर साथी वही, आपके दिल के है जो करीब कहानी वही, जो दिल में बसा था वही नाम लाए हैं, अपनों को अपनों के करीब लाए हैं। 13 अगस्त से आपका उत्सव प्लस कहलाएगा।

0: presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट TravelHubWorld.com.
2: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं जिंदगी भर याद रह जाती हैं और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956-278-228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
2: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected. Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Dad, dad, dad.
3: What's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel, auto protected.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ। Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
12: कृष्णना जन्मनो आनंद उत्सव, एक अज रात एक अज अनुभव।
11: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
12: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
15: Laika Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Laika Gold और online सुनो laikagold.com पे।
16: Gold Breakfast with Kajol.
17: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
2: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
3: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
2: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
3: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel अवारापन 2.
2: इस बार या तो ये अवारापन खत्म होगा या मैं.
3: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Vikrania Media on Instagram.
4: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज.
3: एब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा.
4: गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट्स सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 pounds. बुक टिकट्स एट heroartscentre.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161.
3: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो network.

0: Mamster Golgappe at the Golgappe and the Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Like a

गुड मॉर्निंग। स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में आप सभी प्यारे श्रोताओं का।

0: ये दीप राजा तो साहब शुरू कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, खोलें डायरी, पढ़ें शायरी और फिर उसके बाद गीत संगीत की महफिल चलेगी। याद दिला दूं आपको कि 10:30 बजे हम आपको आज के दिन के साथ जुड़े समाचार सुनवाएंगे और भाई 11 बजे की खबरों के बाद आप सुनेंगे थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन। आज बृहस्पतिवार है और हमारे कुछ श्रोताओं को दर्द भरे गीतों का इंतजार है। भाई बारिश हो ना हो लेकिन कुछ एक टूटे दिलों के लिए आंसुओं की बौछार है और ऐसे श्रोताओं के लिए कुछ खास गीत तैयार है। शिकायतें भी हैं, शिकवे भी हैं, इंतजार भी है, आंसू भी हैं, आहें भी हैं, दर्द भरी शायरी की डायरी भी है। मंजिल की राह मुझको सुझाता भी नहीं है, मंजिल की राह मुझको सुझाता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, छोड़ के जाता भी नहीं है, अब भी नसीब में है मुलाकात के वक्फे, लंबे लंबे अंतराल गैप्स, अब भी नसीब में है मुलाकात के वक्फे, कम भी नहीं करता और वो बढ़ाता भी नहीं है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Reminisce those classics on Leica Gold.
0: सिक्के भी नहीं डालता कासाई वफा में, वफा के प्याले में सिक्के भी नहीं डालता, वो अपने दर से मुझको उठाता भी नहीं है, क्या जानू नाज खुद पे या मेरी वफा पे, रूठूं अगर कभी तो मनाता भी नहीं है।

0: ऐसे भी कोई गीत को बंद करता है झटके के साथ, अगर टूट जाता तो? ये टूटने वाले गीत नहीं है, हाँ टूटे दिलों की दास्तान कहने वाले गीत हैं। भाई आज बृहस्पतिवार है तो कुछ ऐसे गीतों को जगह जरूर मिलेगी, लेकिन पहले ये बताइए कि कल का दिन कैसा गुजरा आपका, और शाम को क्या आप भी बाहर निकले और देखने की कोशिश की जिसे देखने के लिए मना किया जाता है? लोग कहते हैं भाई नंगी आंखों से ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग भाई वो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा हो तो हम देख लेते हैं, मतलब आंख बचा के छुप छुपा के देख लें जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भाई कुछ लोगों ने देखने के तरीके निकाले, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो जो हम सुन रहे थे कि भाई रात हो जाएगी और अंधेरा छा जाएगा, ऐसा तो नहीं कुछ हुआ। और भाई शाम होने के बाद जब रात शुरू होती है तो अंधेरा होता ही है, वो तो होना ही था, लेकिन उस समय हम 6 बजे से बाहर निकले, एक बड़ी भीड़ थी लोगों की पार्क में, और भाई ऑस्ट्रेलिया पार्क में बड़ी रौनक लगी थी, ऐसा लगता था कोई मेला लग रहा है, सब वो अपने अपने यंत्र लेकर के सूर्य ग्रहण देखने के लिए प्रतीक्षारत थे। और साहब हमने देखा कि कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, देखा हमने भी देखा, लेकिन देखा कैसे कि एक पेड़ के ऊपर ना एक सफ़ेद कागज़ चिपका दिया, और साहब फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर बैठ करके एक कागज़ की प्लेट लेके आए, उसमें सुई से सुराख किया, बहुत छोटा सुराख, और अब उस सुराख में से आप भाई सूरज की छवि देखें, सूरज की तरफ प्लेट की, उस सुराख में से सूरज की जो इमेज कागज़ पर पड़ रही थी ना वो दिखा रही थी असली इमेज सूरज की के कितना है, कितने परसेंट वो छुप गया है चांद की ओट में। और साहब कल का जो सूर्य ग्रहण था काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, पर चर्चा का विषय तो भाई आज टेम्परेचर भी बना हुआ है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी धूप सेवन करने को मिल रही है इस देश में, जहां लोग धूप का इंतज़ार करते हैं, जहां लोग धूप का सम्मान करते हैं, वहां अब धूप से बचते फिरते हैं। कुछ लोगों के लिए गर्मियों में रोज़ाना कुछ मिनट धूप में रहना काफ़ी है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। भाई उसके फ़ायदे गिनवाए जाते हैं, बताया जाता है कि धूप सेवन करनी चाहिए, लेकिन पश्चिमी देशों में धूप को लेकर के लोगों का नज़रिया बदल रहा है। पहले तो कई बीमारियों के इलाज के लिए कहते थे कि भाई धूप में रहो, इवन ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों का इलाज कहते हैं धूप से होता है, तो ऐसे स्थानों पर जाते थे पेशेंट्स जहां धूप ज़्यादा मिलती हो। लेकिन साहब पिछले 50 वर्षों में स्किन कैंसर के बढ़ते मामलों ने मेडिकल वर्ल्ड को अपना नज़रिया बदलने पर मजबूर कर दिया है। पब्लिक हेल्थ अभियानों में अब धूप से बचने और सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया जा रहा है। खैर साहब ये तो अब डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति कि कितनी धूप आपको चाहिए, कितनी आपको धूप का जो है, कितनी धूप का सेवन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, और कब ये नुकसानदायक बन सकती है एक्स्ट्रा ज़्यादा धूप सेवन करने से। आगे चल के जिक्र करेंगे, फिलहाल तो भाई कल का सूर्य ग्रहण बहुत चर्चा का विषय है, और चर्चा के विषय तो रिजल्ट्स भी हैं, आने वाले हैं। आज ए लेवल के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो ठीक है साहब अपने को क्या फिक्र है, अपना तो रिजल्ट आना था वो आ चुका है। आपको सही बताऊँ मैट्रिक में कई बार बता चुका हूँ टॉप करते करते बचा था मैं, हाँ कसम से अगर नकल चल जाती तो पूरे हरियाणा में टॉप करना था।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that if you want to send money to India to your family members, friends, so by this is the time because acha rate mil raha hai. Aaj ka rate for £1 they are giving in Indian currency 128.25 rupees. 128 rupees aur 25 paise ka rate chal raha hai. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. DNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai
3: Laika Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: Satco Microwave Food.
1: Dad!
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
1: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
9: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
10: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
11: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं जिंदगी भर याद रह जाती हैं और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
12: Nigel Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Nigel Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Nigel Couture.
13: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
14: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
13: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
15: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
16: Soulful melodies. Timeless poetry. The greatest guzzles that touch your heart. Leica Radio Guzzles. Launches soon. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
18: धड़कन में पाल कर कभी आंखों में ढाल कर रखा है इंतजार को तेरे संभाल कर आए तो है तमाम करूं जिंदगी का मैं जाते समय तू ले गया था जान निकाल कर तू आ तो सही है

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। ब्रिटेन और यूरोप के लोगों ने करीब 30 साल बाद शानदार सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। ब्रिटेन में लोगों को पार्शली आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिला, जबकि ये ग्रहण लोकल वक्त के अनुसार शाम 7 बजे के बाद अपने चरम पर पहुंचा था। उस वक्त ज्यादातर इलाकों में चंद्रमा ने सूर्य को 90% से भी ज्यादा जो है ढक लिया था। हालांकि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन के कुछ हिस्सों में लोगों को टोटल सूर्य ग्रहण देखने का मौका मिला। इन जगहों पर कुछ समय के लिए दिन में ही पूरी तरह अंधेरा छा गया और लोगों ने इस अद्भुत नजारे का अनुभव किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट देंगी इस्तीफा। वजह क्या है भाई? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट इस महीने के आखिर में अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। ट्रंप ने लेविट को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताते हुए कहा कि वो अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हैं। ट्रंप ने कहा कि वो उनके इस फैसले को पूरी तरह समझते हैं और इसका सम्मान करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ट्रेड्रोस ग्रेबियसस ने वार्निंग दी है कि अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो इबोला की बीमारी फैल रही है, अगर वो इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ये अब तक का सबसे खतरनाक इबोला प्रकोप बन सकता है। टेड्रोस ने प्रेस से कहा कि सन 2026 का ये प्रकोप या आपत्ति ये मौजूदा रफ्तार पर 2014 और 2016 के इबोला प्रकोप को भी पीछे छोड़ सकता है। उस दौरान कम से कम 11,000 लोगों की मौत हुई थी। अगर ये इसी रफ्तार से फैलता रहा तो बहुत खतरनाक साबित होगा। पता चला है कि अब तक जो है 4.5 मामले सामने आ चुके हैं, 4,500 और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने फ्रांस के लिए एक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस जैसे देशों को दुनिया के मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कानून पर भाषण देना बंद कर देना चाहिए। अब्बास अराग्ची ने गाजा में इसराइल की कार्रवाई के लिए फ्रांस की हिमायत और ईरान के खिलाफ कथित आक्रामकता हमलावर होने का जो जिक्र करते हुए कहा कि इन नीतियों ने फ्रांस के उस ऊंचे मॉरल स्थान को खत्म कर दिया है जिसे वो अपने लिए मानता था। अराग्ची ने लिखा कि इस मामले में ये फ्रांस का पाखंड साफ नजर आता है और ये शर्मनाक है। भारत से आने वाली खबरों में रांची में जेपीएससी और जेएसएससी जो एग्जामिनेशंस थे उनमें धांधली के विरोध में चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान एफआईआर दर्ज होने के मुद्दे ने तूल पकड़ दिया है। स्टूडेंट लीडर रविंद्र पासवान ने कहा कि प्रोटेस्ट को लेकर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट्स के साथ संयम और संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए, सेंसिटिविटी के साथ बिहेव करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर प्रदर्शन के दौरान किसी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों की पहचान करके कार्रवाई करे, लेकिन इसके लिए सारे प्रोटेस्टर्स को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। भारत के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल अपनी मनमानी करते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं और कहते हैं कि चैलेंज करता हूं, किस बात की चुनौती दे रहे हैं? संसदीय व्यवस्था की अपनी मर्यादा होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक ट्रेडिशन, एक मर्यादा है। क्या आप अमित शाह से अपनी तुलना करेंगे? उन्होंने कहा कि अमित शाह ने काम करके दिखाया है। 370 को हटाया गया, 35A कैसे खत्म हुआ, CAA कैसे लागू हुआ, उन्होंने सब ये काम करके दिखाए और आप देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण हवन को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, लेकिन जिस तरह उनके कार्यक्रम के बाद जो शुद्धिकरण किया गया वह उनके लिए इंसल्टिंग है, अपमानजनक है। मानसून सेशन के आखिरी दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई इनडेफिनेट पीरियड के लिए स्थगित कर दी गई है। परंपरा के मुताबिक वंदे मातरम के गायन के बाद सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लगातार विरोध और जोरदार नारेबाजी के बीच लोकसभा को सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन इस बीच 12 बिल लोकसभा में पास हो गए। हालांकि बहस और चर्चा के लिहाज से सेशन उतना असरदार नहीं रहा। और ये खबर भाई, साउथ कोरिया का इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहली बार दुनिया का सबसे बिजी हवाई अड्डा बन गया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में इंचियोन एयरपोर्ट से 3.84 करोड़ इंटरनेशनल मुसाफिरों ने यात्रा की। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल उसके प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस लिस्ट में लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा 3.779 करोड़ मुसाफिरों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। कभी वही पहले नंबर पर भी होता था। और तीसरे नंबर पर रहा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट 3.453 करोड़ यात्रियों के साथ। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: गीत के साथ वो चुलबुली अभिनेत्री याद आ रही होगी आपको भाई, अपने समय की बहुत क्या कहें कि चर्चित अभिनेत्री, और आज के दिन उसका जन्म हुआ था। श्रीदेवी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिर्फ श्रीदेवी ही नहीं, अनीता राज भी आज ही अपना जन्मदिन मनाती हैं, और अपना जन्मदिन मना रही हैं अपने दौर की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना। और भाई वैसे साउथ से आने वाली ये जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो अच्छी डांसर्स तो होती ही हैं, चाहे वो श्रीदेवी हों, वैजयंती माला हों, या फिर और भी जो अभिनेत्रियाँ आई हैं। तो आज वैजयंती माला बाली भी अपना जन्मदिन मना रही हैं, 1936 में पैदा हुई थी वैजयंती जी, और अपने दौर की सुपरहिट अभिनेत्री रही थी। हैप्पी बर्थडे टू हर। और भाई अगर श्रीदेवी दुनिया में होती तो वो आज अपना जन्मदिन मना रही है।
1: ये है Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और करेंसी रेट्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लेम्फाई के थ्रू पैसे भिजवाना चाहते हैं तो वो एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में दे रहे हैं 128.72 रुपीज़, पाकिस्तानी 374.79, श्रीलंकन 450.53, बांग्लादेशी टके 166.09 एंड अफगानी 88.29।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.51 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: This part of the show is brought to you by Star Plus.
4: Previously known as Utsav Plus.
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 39.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208-839-0880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan. Shravan ke pavitra mahine mein kare भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027-1934.
2: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
3: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
2: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड.
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
5: फोन 0208574-8410.
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
9: कृष्णना जन्मनो आनंदोत्सव एकज रात एकज अनुभव.
8: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
9: Stall and sponsorship mate call 0794-024-667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
11: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
12: परंपरा भी
13: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 0779518100.
14: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
15: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और इस दौर का आगाज हम चिंतन से किया करते हैं। थॉट फॉर द डे, आज का विचार, प्रेरक विचार, इंस्पायरिंग इंसिडेंट और भाई प्रसंग, यानी कोई कहानी, कोई कथा, किसी महापुरुष के जीवन के साथ जुड़ा हुआ कोई वाक्या ढूंढ कर लाते हैं। कई बार हमारे श्रोता भी सुझाते हैं। आज अगस्त महीने की 13 तारीख है। कई बातों को लेकर इसका महत्व है, कई विशेष व्यक्तियों का आज जन्मदिन पड़ता है, कुछ तीज त्योहार भी जुड़े हैं इसके साथ, लेकिन आज एक खास दिन है, विश्व अंगदान दिवस। और हिंदी में आपको मुश्किल लगता हो तो भाई अंग्रेजी में इसे कहेंगे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है, उसकी आंखें दुनिया को देख सकती हैं, उसका दिल किसी और सीने में धड़क सकता है, उसके फेफड़े, उसका लीवर, यहां तक कि उसकी स्किन भी किसी व्यक्ति के काम आ सकती है। और हम ऐसी अमूल्य चीज को दफना देते हैं या जला देते हैं। आज भी कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि ये उनकी मर्यादा के विरुद्ध है, उनके मजहब के खिलाफ है,

तो बहन भाइयों, अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन केवल एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इंसानियत का एक सर्वोच्च उपहार है। एक व्यक्ति के अंगदान से कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है। यस, मौत के बाद भी हमारी आंखें किसी को रोशनी दे सकती हैं, हमारा दिल किसी की धड़कन बन सकता है, और हमारे अंग किसी परिवार की बुझती हुई उम्मीद को फिर से जगा सकते हैं, जगमगा सकते हैं। इसलिए अंगदान के बारे में जाने, संकल्प लें। जीवन का सबसे बड़ा दान वही है जिससे किसी और को जीवन दान मिले। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी, जब उनकी मृत्यु हुई तो भाई उनका अंतिम संस्कार का समय था, तो पता चला कि वो तो अपना पूरा शरीर दान कर गए हैं। माई डेड बॉडी शुड बी डोनेटेड टू द मेडिकल वर्ल्ड टू यूटिलाइज इट एज इट कुड बी। मेरे शरीर का कोई भी अंग जो किसी भी काम आ सके, भले ही डॉक्टर्स को स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल करना हो, मेरी आंखें, मेरा लीवर, मेरी फेफड़े, मेरा दिल। और बहनों भाइयों, इस तरह से गर्व हुआ लोगों को जानकर कि वो बुजुर्ग मुख्यमंत्री बहुत देर तक, जब तक वो थे तब तक बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, उसके बाद तो आज जैसे गायब हो गई है वहां से। कुछ लोगों के दम पर उनकी पूरी पार्टी और उनकी पॉलिटिक्स टिकी होती है, उनमें कुछ ना कुछ तो होता है। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक लड़की जो ब्लाइंड थी, आवाज की भाई सहारे, स्टिक के सहारे रास्ता बना लेती थी, ढूंढ लेती थी। ऐसे में एक दिन बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए उसे एक नौजवान मिला। उसने बस में सवार कराने के लिए उसकी हेल्प की। दोनों सीट पर साथ साथ बैठे और बातचीत का सिलसिला चला, तो दोस्ती हो गई। अब उसी बस स्टॉप पर वो अक्सर मिलते, और बस के सफर में वो लड़का उस लड़की को अच्छी अच्छी बातें बताता, और वो खिड़की से बाहर देखकर वहां के नजारे ऐसे बखान करता कि वो अंधी लड़की भी जो है उन्हें एंजॉय करती। दोनों में घनिष्ठता बढ़ी और एक दिन दोनों के बीच प्यार हो गया। लड़का बहुत सेंसिटिव था, बहुत ख्याल रखता उसका, और लड़की भी कहती थी कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। पर कुछ ही दिन बाद वो लड़की बस स्टॉप पर नहीं आई। पता लगा भाई उसे एक आंखें दान करने वाला कोई नौजवान मिल गया, और वो अपने माता पिता के साथ पास के शहर में चले गई आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। उसकी आंखों में ज्योति लौटी, उसने दुनिया पहली बार देखी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर उसको याद आ रही थी उस नौजवान की जो हर रोज उसे बस में मिलता था। उसने उसे देखा नहीं था, लेकिन वो उसकी आवाज से परिचित थी, उसकी खुशबू को वो पहचानती थी। एक दिन एक नौजवान उसके घर के दरवाजे पर आया, उसके बारे में पूछा तो वो मिली, कौन हो तुम? बोला तो लगा कुछ परिचित सा है, पर वो अंधा था, ब्लाइंड था। कौन हो तुम? उसने अपना नाम बताया। वो चौंक गई, तुम? आवाज वही है, मैं तो तुम्हारे बदन की खुशबू ही पहचानती हूं, तो हम नजदीक बैठते थे बस में, लेकिन तुम ब्लाइंड हो? हां, मुझे यकीन है जैसे मैं तुम्हारे अंधेपन से प्यार करता था, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आई है, अब तुम भी मुझे प्यार करोगी ना, मुझसे शादी करोगी? लड़की ने सोचा, फिर जवाब दिया,

अंधेपन की परेशानियां अच्छी तरह जानती हो। नहीं, मैं बाकी की जिंदगी अंधेपन का एहसास नहीं रखना चाहती अपने आसपास। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब तक अंधी थी, पर इतनी अंधी नहीं हूं अब मैं कि मैं अंधेपन को भूल चुकी हूं। यह अंधकार मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नौजवान उल्टे पांव मुड़ गया, जाते जाते कहने लगा, सुनो एक मेहरबानी करना। बोली, क्या? मेरी आंखों को संभाल कर रखना। जिन आंखों से तुम दुनिया देख रही हो, मैंने ही तुम्हें डोनेट की है। और इसके बाद वो नौजवान तेजी से निकल गया। लड़की खड़े खड़े जैसे गिरने को हुई, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो चीख कर उसे पुकारना चाहती थी, बुलाना चाहती थी, पर वो जिस ऑटो में बैठकर आया था उस घर तक, उसी में बैठा और ऑटो वाले को कहा कि मुझे तेजी से यहां से निकाल लो, मुझे आंखें डोनेट करने का इतना दर्द नहीं हुआ था जितना अपनी प्रियतमा की, अपनी प्रेसी की यह बात सुनकर हुआ है। लगता है अब मैं अंधा हुआ हूं। पहले मेरे पास दृष्टि थी, मैं सोचता था वो मेरी नजर बनेगी, नजारा बनेगी।

मेरे भाइयों कलयुग का दौर है, उसने आंखें दी, किसी को रोशनी दी, पर उसे पश्चाताप नहीं था। उसने अपना काम किया, बदले में कुछ चाहे तो वो प्यार नहीं होता, व्यापार बन जाता है। उसने नहीं चाहा था कि उसे बदले में कुछ मिले, इसलिए वो वहां से लौट गया।

आंखें बहुत कीमती उपहार हैं। आपकी दुनिया से जाने के बाद भी वो दुनिया को देखती रहें, ऐसी दुआ कीजिए, ऐसा कोई काम कीजिए, ऐसा कोई उपहार दीजिए। आप अपने अंग दान कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर के अंग किसी के काम आए, इसलिए मैं ये अधिकार देता हूँ, ये अथॉरिटी देता हूँ।

0: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: पहले चिंतन को समेटते हैं, गीत रह गया हमारा, बाद में सुनवा देंगे, लेकिन धन्यवाद दें डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा को जो ऑर्गेन डोनेशन के मामले में बहुत काम कर रहे हैं और इस नेकी के कार्य के लिए यहाँ की राज सत्ता ने, यहाँ की महारानी क्वीन ने, उस समय जब वो शासन कर रही थी राजा से पहले, उन्होंने उन्हें जो है सम्मानित भी किया था. डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा ऑर्गन डोनेशन के मामले में दुनिया भर में काम कर रहे हैं और इसीलिए वो अभी इसे सम्मानित हो चुके हैं. डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट टुडेज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के लिए. अब आ जाइए भाई, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने पैसे दे रहे हैं एक पाउंड के बदले में भारतीय करेंसी में.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Well, today's rate is 128.25 rupees for £1. 128 rupees 25 paise. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: On this week's Leica Extra podcast, we discuss astrology, truth or trap, hosted by Kush, who talks to an astrologer and palm reader.
3: Let's talk about the next generation of South Asians, because whether it's astrology, whether it's anything to do with gemstones, lucky color, lucky days, palmistry, matching charts, any of that, it's not going anywhere.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits, back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: TravelHub.
4: At all protected.
2: Leica.
6: और बना भाइयों, back to back संगीत में हम उस गीत को शामिल करते हैं जो हमने चिंतन के लिए चुना था. लेकिन साहब, कभी कभी गीत जो है खोले से खुलता नहीं है, ढूंढने से मिलता नहीं है. पर जुटा लिया है चिंतन के साथ जाने वाला गीत. कौन सा था?
7: चिंतन, चिंतन.
6: गुरुदास मान कहते हैं कि अखा गई जहान गया. आंखें हैं तो हम दुनिया को देख सकते हैं, आंखें नहीं तो सब कुछ जो है गायब है हमारे लिए. दंद गई थे खान गया, अखा गई जहान गया. आंखें पूरा विश्व है. और भाई, आपकी आंखें आपके दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया को देखती रहें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर लीजिए आज के चिंतन के साथ, डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा के आलेख के साथ ये गीत स्वीकार कीजिए.

0: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और लीजिए साहब, आज जन्मदिन मनाने वाले फिल्मी सितारों की बात तो बाली भाई किया करते हैं, लेकिन मैं इसलिए जिक्र करूं अनीता राज का कि मैं अब तो भाई वो 60 से ऊपर हो गई हैं, बुजुर्गों में शामिल हो गई हैं, लेकिन अपने यौवन के दिनों में जब वो भाई चर्चित अभिनेत्री थी, मैंने उन्हें इंटरव्यू किया और स्टूडियो में मैं उन्हें जितना गौर से देखता तो मुझे किसी की याद आती, किसकी भला जानते हैं, फिल्म अभिनेत्री नरगिस की। और मैंने पूछ ही लिया इंटरव्यू में उनसे, लाइव एयर में पूछा, क्या किसी ने आपको बताया है कि आपकी शक्ल सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस नरगिस जी से मिलती है? कहने लगी, बताया है ना। मैं, क्या किसी ने बताया? कहती, खुद उनके बेटे संजय दत्त का कहना था तुम मम्मी जैसी नजर आती।

अनीता राज की फिल्म का गीत सुनिए और उन्हें हैप्पी बर्थडे कहिए मन ही मन में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये है मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

0: आशा भोसले और सखियों की आवाज में ये गीत प्रेम गीत फिल्म से अनीता राज की फिल्म
1: ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: थैंक यू भाई, थैंक यू। नैना शाह कहती हैं बहुत पसंद आया गीत भाई, ये नहीं इससे पहले और ये गीत भी जिनको पसंद आया बता दें, इसलिए कि भाई लोग ये ना कहें सुबह से क्या रोना पीटना लगा रखा है शर्मा जी सब दर्द भरे गीत भाई, उनकी भी अपनी पहचान है, उनका भी अपना स्थान है, लेकिन शादी का गीत लगा करके थोड़ा रंग बदलने की कोशिश की है।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा
0: पॉडकास्ट अपडेट। और आपको बता दें भाई, लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 28 इज देयर। टाइटल है इसका, इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप? भाई क्या ये एक छलावा है, पैसे बनाने का साधन है, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? इस बात को अच्छी तरह से डिस्कस किया है खुश ने। और भाई खुश के साथ आप ये कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा, ये लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: ये है
4: लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Visit travelhubworld.com.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: Kajal Couture's biggest end of season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
10: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
11: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
10: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
11: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
10: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
11: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
10: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
11: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
12: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
13: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
12: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
13: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
14: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
15: कृष्णना जन्मनो आनंदोत्सव एक रात एक अनुभव।
14: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
15: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
16: Ilford, अब असली Indian flavors का मजा लीजिए।
17: परंपरा भी
18: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513
4: 9 Cranbrook Road, Gans Hill, Ilford. IG26HA. Call 07555506015.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
17: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना. मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 02037736333. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
19: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
20: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
21: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
22: It's summer on the Like a Radio Network.

मैं हूँ बाली ब्रह्म भट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।

0: एक क्लास है इस तरह के संगीत को सुनने के लिए। गुलाम अली खान साहब की आवाज, और भाई कुछ लोग झूम उठते हैं ऐसे सुरीले गायक कलाकार की ऐसी अदायगी, ऐसी पेशकश। कुछ लोग भाई इतने दीवाने हैं खान साहब की आवाज़ के कि उनकी गाड़ियों में जो एल्बम लगी हो या उनके फ़ोन पर जो है परमानेंटली जो है ये आवाज़ गूंजती है। गुलाम अली खान साहब की आवाज़ के अलावा प्रोग्राम के तीसरे भाग की शुरुआत हमने सोनू निगम की आवाज़ से की। सोनू निगम भाई, बहुत देर तक मुझे ये नहीं पता था कि वो भी हरियाणवी हैं और मेरे प्रदेश से, लेकिन हमने जब सीधे से एक साथ एक हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की तो भाई हम और ज़्यादा करीब आए। वैसे पहले से परिचय हमारा था, हम मिलते जुलते रहते थे और कई बार उन्हें इंटरव्यू किया। तो सोनू निगम भाई को और गुलाम अली खान साहब को, भाई एक बात बताऊँ आपको, गाना बना चाहे हमें नहीं आता हो बहुत अच्छा, लेकिन गाने गाने वाले जो सुरीले गायक कलाकार है ना, उनकी संगत करके बहुत कुछ सीखा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दौर में आइए पहले आपको रेट बताते हैं SBI का। अगर आपको पैसे भारत भिजवाने हो तो नोट कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय, स्टेट बैंक ऑफ SBI UK इस समय दे रहे हैं £1 के बदले ₹128.25। यस द प्रेजेंट रेट 128.25 रुपीज, एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Like a Gold.
3: Like a Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: book now. Visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323-073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 0208-574-8410.
3: साफो ट्रेवल. Auto protected.
4: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
5: Govind bolo Hari Gopal.
6: Krishna Janmano Anand Utsav. Ekaj Raat Ekaj Anubhav.
5: Nand ghar Anand bhayo jay kare.
4: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardommedialtd.com.
6: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp, available now.
9: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
10: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
11: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
12: और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि इस सप्ताह की आर्टिस्ट का नाम है, हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक, लता मंगेशकर. और भाई, लता जी के वैसे तो कितने ही गीत, असंख्य गीत हिट हैं, सुपर हिट हैं, पर ये गीत भी बहुत चर्चित हुआ हर जमाने में.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
2: आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज लता मंगेशकर, लेकिन बर्थडे गर्ल ऑफ द वीक किसे कहेंगे आप? भाई आज श्रीदेवी का जन्मदिन है, आज अनीता राज का जन्मदिन है, लेकिन कैसे भूल जाएं अपने दौर की महान अभिनेत्री वैजयंती माला जी को। ये गीत जो आपने सुना ना, तंडोले मंडोले, ये भी उनकी फिल्म का था। और भाई जिन फिल्मों में वो बहुत ज़्यादा चर्चित हुई उनमें एक फिल्म संगम भी थी।

0: राज कपूर की फिल्म संगम में और भाई दिलीप कुमार की फिल्म लीडर में एक मुकाबला चलता था और वैजयंती माला उस दौर की सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी अभिनेत्री होती थी। भाई वैसे तो फिल्मी सितारों के बारे में ज़्यादा अलाउड नहीं हमें बताना, लेकिन वैजयंती जी का जिक्र इसलिए भी करूं कि वैम्बली में मेरी इनसे मुलाकात हुई, तस्वीरें खिंचवाई और भाई देखा कि किसी भी उम्र में अभिनेत्री ये पहुंच जाए, वो मेकअप भी करती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं और भाई क्योंकि नृत्यांगना है तो हेमा मालिनी की तरह और दूसरी साउथ की अभिनेत्रियों की तरह तो बहुत खूबसूरत लगती हैं वैजयंती माला जी, हर पोशाक में, हर मेकअप में, हर उसमें भाई पोज में। वैजयंती माला जन्म नाम तो उनका वैजयंती माला रमन था, लेकिन चमनलाल बाली से इनकी शादी, वैसे बता दें आपको राज कपूर के साथ भी इनका नाम जुड़ा था लेकिन शादी के बंधन तक बात नहीं पहुंची और चमनलाल बाली उनसे इनका विवाह हुआ और ये बन गई वैजयंती माला बाली और 1968 में शादी हुई। 1986 में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वैजयंती माला जी जिनके पास बहुत सारा सम्मान यानी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री और फिल्म फेयर अवार्ड्स बहुत सारा इनके पास जो है भाई क्या कहती हैं भंडार है अवार्ड्स का, तो वैजयंती माला आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हर।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Laika Gold.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: कैसे हटाएं सावन की घटा, पहले घटा लाओ तो सही भाई। बात यह है कि अब तो बुला सावन की घटा, जरूरत है महसूस हो रही है बड़ी जबरदस्त सावन की घटा की, क्योंकि घास सूख करके बिल्कुल उस बुजुर्ग की दाढ़ी जैसी हो गई है, जिसे रंगने के बाद भी उसका कलर जो है ना वो सफेद रहता है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: रेट्स नोट कीजिए भाई, ये एक पाउंड के बदले दे रहे हैं लैम्फाई वाले 128.75 रुपये भारतीय मुद्रा में, इन इंडियन करेंसी 128.75 रुपीज, पाकिस्तानी 374.54, श्रीलंकन रुपए 449.8, बांग्लादेशी टके 165.62 और अफगानी 88.38.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.58 pounds per gram.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: Like a gold. आप सुन रहे हैं मनोरंजन विद रवि शर्मा। और बहनों भाई, ये क्या लिख रहे हैं भाई? एक तो लोगों को वो गुलाम अली खान साहब की जो गज़ल जो बहुत पसंद आई, वो गीत कही है, गज़ल कही है भाई, ज़बरदस्त है उनकी आवाज़ की, क्या कहें। और अब तो ठीक है, उम्र के साथ उनकी आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती जा रही है, लेकिन क्या कंट्रोल है उनकी उनकी आवाज़ पर। तो खान साहब, आपके नाम करते हैं और जिन जिन को कहते हैं भाई हमें बहुत अच्छी लगी आज की ये पेशकश, तो आप सबके नाम। और अब क्या कह रहे हैं आप, कहते हैं शर्मा जी शर्म करो, आपका सावन शुरू हुआ तो सावन के इतने गीत बजा दिए और हमारा सावन शुरू हुआ तो कहते हैं हटा सावन की घटा। नहीं भाई, बिल्कुल मत हटाइए, घटा की ज़रूरत है। सावन आया है, स्वागत है उसका, लेकिन असल में लाइए ना।

0: आज फिर सावन, मतलब पहले कब आया था? अरे सावन तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे वो भाई साहब के सिर से सींग गायब हुए थे ना। थैंक यू वेरी मच नैना शाह, रागिनी, मानसी और ललित छत्री शाह कहते हैं, चिंतन के जरिए अंगदान के बारे में जो जागरूकता फैलाई उसके लिए धन्यवाद। और भाई आपने याद दिलाया तो फिर करना था ना। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई। और राजकुमार जी सबको राम राम पहुंची आपकी। अर्जुन जी और भाई हमारे जितने भी श्रोता साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विमल जी, विमल रायन और राजीव पटेल, जगदीश जी, सुनीता, रोहित, अरुणा, हरविंदर, मुस्तफ़ा मुंबई में, मुस्तफ़ा भाई हाँ कभी कभी हेलो कर लिया करें, याद दिला दें कि आप जुड़े हुए हैं, हमने सोचा कहीं चले गए गुम हो गए हैं। मुस्तफ़ा भाई मुंबई से हमारे साथ जुड़ते हैं। जैस्मीन, वत्सला और रंजन, निशा और गुरुदेव गांजा, भरत गंगाराम, हिमांशु पटेल, हिना जी थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू, नहीं सो से काम नहीं चलेगा, 200 नाइस ऑफ यू, 500 नाइस ऑफ यू। रचना जी,
1: लाइका गोल्ड। This part of the show is brought to you by Star Plus,
2: previously known as Utsav Plus,
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 0 3 9 6 3 5 7 5 7. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192-388-3100. Atoll protected.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
9: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal Couture.
10: be part of a historic grand opening.
11: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
11: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-6333.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
13: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
14: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्सलो, TW3 1QT. कॉल करे 07487-687-885.
15: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: सोचा था जमाना बदलेगा, मौसम ये सुहाना बदलेगा, बदलेगी हर एक शय दुनिया की, पर दिल ना दीवाना बदलेगा. जो रोज नया लगता था हमें वो यार पुराना बदलेगा. रहता था जो दिल में इल्म ना था कि वो रोज ठिकाना बदलेगा. अब जाके ना लौटेंगे यारो, ये आना जाना बदलेगा. इजाजत दीजिए और बाली भाई का इंतजार कीजिए. Have a superb day and bye bye from Ravi Sharma. Yeah.

0: मुश्किल।
1: यस वी ऑल मिस श्रीदेवी। आज उनको याद किया जा रहा है। She would have been 63 years young. She passed away at the age of 54. देखा जाए तो जब भी उनके बारे में मैं जिक्र करता हूँ, मैं बोलता हूँ 4 से 54। 4 से 54 क्यों? क्योंकि 4 की उम्र में she started as a young starlet, destined to become a superstar because of her versatility in acting serious and comedic roles, plus for her dancing skills. She started in M.A. Thirumugan's film, that was Thunaivan, at the age of 4. Yes, and she acted in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada films, very much famous there too, as much as Bollywood. तो 4 साल की उम्र में उन्होंने थुनाइवन फिल्म में एक्टिंग की एंड शी पास्ड अवे एट 54। सो 4 से 54 तक वो बिजी रही, काम करती रही। शी पास्ड अवे ऑन 24th February 2018 इन दुबई। आई विल नॉट गो इनटू एनी डिटेल्स बट हर सैड एंड अनटाइमली डिमाइस was due to a massive cardiac arrest, so we are told. She started as a fashion model in 2008. it was like a tagline. It says, "The Goddess Returns," 2008. Now, जब मैंने कहा 4 साल की उम्र में उन्होंने acting शुरू की थी, so she was active from 1967 to 1997 and kaisi kaisi filme, completely uninhibited in front of a camera. Chalbaz, Lamhe, Nagina, Mr. India, numerous Filmfare awards isme unko mile and 10 nominations mile the unko. Gumrah, कौन सी थी, गुमराह, लाडला, जुदाई, इंग्लिश विंग्लिश एंड मॉम, खुदा गवाह, चांदनी, सदमा, इन सब में उनको नॉमिनेशंस मिले थे। पर क्या रोल्स अदा किए थे इन्होंने। बॉलीवुड डेब्यू उन्होंने कब की थी? बॉलीवुड डेब्यू एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन फिल्म जूली 1975 में एंड लीड रोल इन 16 साल वो मूवी थी एक 1970s की एंड फर्स्ट एडल्ट रोल एट द एज ऑफ 13 इन अ तमिल फिल्म दैट्स मोंड्रू मुडीचू। मैंने इतनी बार कहा है मुझे प्रोनाउंसिएशन आ गया है अभी। मोंड्रू मुडीचू 1976 की एंड शी गॉट अटेंशन इन द फिल्म हिम्मत वाला 1983 की। फिर तो तोहफा, मिस्टर इंडिया, चांदनी, सदमा, डबल रोल्स इन चालबाज एंड लम्हे। चालबाज में बहने थी और लम्हे में मदर एंड डॉटर थी। अभी आज 2 ट्रिब्यूट्स मैं करने वाला हूं। एक है श्रीदेवी जी एंड दूसरी वैजंती माला जी। वैजंती माला इज दी ओल्डेस्ट हीरोइन अलाइव इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, 93 टुडे। सो It was Kamini Kaushal till November 2025 when Kamini Kaushal ji passed away at the age of 98 and now it is Vajanti Mala whom we wish would have a longer, happier and healthier life. Unke bare mein second hour mein shuru karenge hum, lekin is hour mein it's a tribute to Shri Devi. श्री देवी जी की बात करूं तो इन 2013 ऑन द ओकेजन ऑफ सेंटिनरी ऑफ इंडियन सिनेमा दैट इज 100 ईयर्स अ नेशनल पॉल वाज कंडक्टेड बाय CNN एंड IBN। श्री देवी वाज वोटेड एज द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस इन द 100 ईयर्स। नेवर लेफ्ट एनी रोल शॉर्ट ऑफ परफेक्शन। जी हाँ, एक कमेंट पास की थी। देयर वाज अ जर्नलिस्ट, अ फिल्म क्रिटिक एंड अ रियल गुड क्रिटिक, सुभाष के झा। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे उनकी एक्टिंग He said Sridevi makes the contemporary actresses, even the coolest ones, look like jokes. If you watch any two films a year, make sure you watch English Winglish twice. Ye comment thi, what a compliment. We are remembering Sridevi this hour. And maine chune hain achhe achhe gaane.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can fetch you 128.25. That's 128.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Deirdre, look, it's the bottomless this time, sliding across their car bonnet.
6: Leave them be, Philip. They just claim confident.
5: Claim confident?
6: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
5: Deirdre? Deirdre? Come back here.
7: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
8: Mukesh aur Lata Mangeshkar ke evergreen gaano ki yaadon mein ek khoobsurat musical sham. Pankaj Sotha presents Hum To Tere Aashiq.
9: Tum to tere aashiq hai sadiyon pura.
8: Sweet memories of Mukesh and Lata with Sangeeta Melekar aur Mukhtar Shah live band ke saath. 29th August Hedge and High School Harrow. 30th August Woodminster School South London. Dinner from 5 p.m. Show starts at 7 p.m. For tickets and more information, call Deepa on 07947561947.
10: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208 426-0678.
12: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you noticed straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
16: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
17: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
15: Southall Travel can take you there.
18: Southall Travel, at all protected.
19: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
20: Govind Bolo Hari Gopal.
2: કૃષ્ણના જન્મનો આનંદ ઉત્સવ, એક જ રાત એક જ અનુભવ.
20: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
2: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
21: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
22: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
23: परंपरा भी
24: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
25: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ अगस्त एंड गेट अप टू 400 ऑफ. कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 02089510111.
26: लाइका गोल्ड लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
27: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
28: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a movie, Chalbaz, with Shri Devi.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3496, Indian rupees 128.73, Pakistani rupees 374.56, Afghan Afghanis 88.39, Kenyan shillings 174.45, and I'm missing out one currency, which happens to be, I think this is the Mauritian rupees. And if I get a chance, I can get the Mauritian rupees right here. Mauritian rupees is £1 equal to 63.61.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
4: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
5: This part of the show is brought to you by Star Plus.
6: Previously known as Utsav Plus.
5: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: is Laika.
1: A beautiful song, Mr. India Me. कविता कृष्णमूर्ति, आई होप यू एंजॉय द ट्रिब्यूट ऑफ श्रीदेवी. गुस्ताखी माफ, मैंने वो तोहफा का गाना जयप्रदा वाला डाल दिया. आई हैव डन दिस बिफोर एंड आई डिड इट अगेन. नेवर अगेन, नेवर थर्ड टाइम.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency equivalent to one sterling pound. We got US dollars 1.3499, Indian rupees 128.78, Pakistani rupees 374.62, Afghanistanis 88.34, Kenyan shillings 174.47, and Mauritian rupees 63.62. Did I say US dollars? 1.3499.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gold Afternoons with Bally Brambat. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: This part of the show is brought to you by Star Plus.
4: Previously known as Utsav Plus.
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
5: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
8: Dad,
9: what's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
10: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
13: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
12: डेजर्ट सफारी,
13: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
12: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
13: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
14: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
15: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
16: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
17: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स, परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल, हैरो लेजर सेंटर।
18: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678।
19: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
20: बीकानेर वाला परंपरा भी,
21: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 0755-506015।
22: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk।
23: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: ये कौन सी फिल्म है? कॉलेज गर्ल।
1: हम और तुम और ये समां, लवली।
0: Whenever you think of Shammi Kapoor and Vaijanti Mala, you think of film Prince, है ना? लेकिन मैंने ये चूज की, कॉलेज गर्ल। कितना अच्छा गाना है, पिकनिक पिकनिक वाला गाना।

0: Isn't it lovely? This picnic will continue next hour. And उसमें हम थोड़े गाने modernize कर देंगे वैजयंती माला जी के. Yes, you'll enjoy it.
1: Like a Goon, London का number one Asian retro music station.
0: राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला एक गाड़ी में जा रहे हैं और गान फिल्म है आस का पंछी.

Such exciting songs compared to last hour. That means 1950s के जो मैंने गाने आपको सुनाए थे. लेकिन इस आवर में मैं थोड़े से नए गाने सुनाता हूँ वैजयंती माला जी के. एंड टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स दैट शी हैड एक्टेड विद, दिलीप कुमार, राज कपूर, मनोज कुमार. मनोज कुमार के साथ डॉक्टर विद्या एक अच्छी फिल्म थी. एंड शी एक्टेड इन दैट वन एज वेल. आई थिंक फूलों की सेज एंड ऐसी फिल्में थी. देवानंद साहब के साथ तो ऑफकोर्स मैं क्या बोलूँ आपसे. ज्वेल थीफ जो फिल्म थी वो तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ वैजयंती माला जी के लिए. यूज टू से संजीव कुमार के साथ थी. एंड देन प्रदीप कुमार के साथ नागिन जैसी फिल्में. एंड देन देयर वाज अदर फिल्म्स एज वेल बट आई वोंट गो इनटू दोस डिटेल्स बिकॉज आई गॉट अदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज. एंड देन सुनील दत्त जी के साथ आम्रपाली, यस, उत्तम कुमार, छोटी सी मुलाकात. एंड देन राजेंद्र कुमार के साथ आज का पंछी एंड संगम एंड सूरज एंड साथी. एंड साथी फिल्म में 18 साल के बाद नौशाद साहब ने मुकेश जी को गवाया था. पहले मुकेश

0: SG was the voice of Dilip Kumar Saab, and then Muhammad Rafi Saab gaane lage Dilip Kumar Saab ke gaane, aur Mukesh Ji gaane lage for Raj Kapoor. To us dauran 18 साल बीत गए थे जब नौशाद जी ने उनको वापस फिल्म साथी में गवाया था, और क्या गाने थे, और ये जो आपने सुना अभी, एंड ज्वेल थीफ ऑफ कोर्स, दिल पुकारे आरे आरे. अभी देवानंद साहब की अगर मैं बात करूं तो एक फिल्म थी, विच वन वाज इट, आई थिंक तुम सा नहीं देखा, मैंने बात की थी ना आपको कि वैजयंती माला वाज placed off Devanand in that particular film, but then Sashadhar Mukherjee changed the whole scene. And then there was another story about Devanand Saab. Yes, first time with Devanand was film Amardeep, and it was not a hit film, but that was the first time Vijayanti Mala was with Amardeep, remake of a Tamil film which Amaradeepam, 1956 ki ek film thi. And along with Padmini, who was also in the film. And during shooting, Devanand called her Papa. Her friend, family and friends called her Papa in Tamil. So during the shootings, Devanand used to call call her like Sokun Pair with Devanand. It wasn't the hit film Amardeep, first time with Devanand. And then एक और स्टोरी है मेरे पास, जैसे कि दिलीप कुमार साहब के साथ फोर्थ टाइम विद दिलीप कुमार इन पैगाम विद राजकुमार एंड बी सरोजा देवी एंड पंडारी बाई एंड मोतीलाल एंड वैजयंती माला रियल लाइफ मम वसुंधरा ऑल्सो एक्टेड इन अ स्मॉल रोल इन दैट फिल्म पैगाम एंड गंगा जमुना दैट वॉज यू नो दिलीप कुमार प्रोडक्शन यू नो दैट ऑब्वियसली हु डजंट नो दैट एंड शी वॉज टोल्ड बाई दिलीप कुमार विच ड्रेस टू वेयर इन एवरी सीन ऑफ द फिल्म जो भी सीन आता था उसमें दिलीप साहब उनको बोलते थे कि ये आपको ड्रेस पहनना है because it was Dilip Kumar's production and she did what he said, no doubt about it. Abhi Bimal Roy ki Madhumati ki baat kare hum, 1958-59 ki film and story of Madhumati. The filming was done in the hills of Nainital and she was required to dance barefooted and she tripped on a stone and she fell, hurting herself so badly, causing damage to her fiber tissues in the sole of her foot. So Bimal Roy insisted on her wearing sandals, which made it difficult during running sequences, and this pain remained for a long time after completion of Madhumati, which was the hit of the year 1958. And then reincarnation films caught on after Madhumati, Milan film. ये फिल्म के बाद सब री इनकारनेशन फिल्म शुरू हो गई थी, मिलन, महबूबा, कुदरत, द फिफ्थ हाईएस्ट ऑफ द डेकेड ग्रॉसिंग फिल्म, यू नो, एंड कर्ज फिल्म थी, करण अर्जुन फिल्म एंड ओम शांति ओम. द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म वॉज कॉपीड फ्रॉम मधुमती ऑफ ओम शांति ओम, 2007 की फिल्म. लेट बिमल रॉयज डॉटर रिंकी भट्टाचार्य एक्यूज द मेकर्स ऑफ प्लेजरिज्म एंड थ्रेटन टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट इट्स प्रोड्यूसर्स. फिर क्या हुआ मुझे क्या पता, देखेंगे. वैजयंती माला एक्टेड एज माधवी, राधा एंड घोस्ट मधुमती. बी आर चोपड़ा की फिल्म थी साधना विद सुनील दत्त एंड गॉट रिलीज इन द सेम मंथ एज मधुमती. Did you know that? Sadhna film with Sunil Dutt and Madhumati, same month mein release hui thi. First choice of B.R. Chopra was Nimmi. Lekin Nimmi, for the film Sadhna, who refused to do the role of a prostitute in this film Sadhna. Do you know, this led to her career decline. Nimmi ki career wahan se decline hui because she refused that role. Hence, Vijayanti Mala did the role after Chopra's Naya Daur, and it was a box office hit. Second Filmfare nominations of Best Actress, Madhumati and Sadhna, she got it for Sadhna, first award, after refusing support role awards for Devdas. And these are some wonderful stories of Vaijanthimala as I go along wishing her a happy 93rd birthday. And, you know, some silly people, stupid people, last March mein unhone keh diya ke she had passed away, and there were rumors in on the internet. And then I contacted her son, Suchindra, who told me she's very much alive and fit and happy, and it's very wrong of people to put such wrong news. वो दिलीप कुमार साहब के साथ भी होता था, देवानंद के साथ भी हुआ था. Plenty of people do silly things like that. But let's carry on and listen to our artist of the week, which is Lata Mangeshkar ji. And I have chosen a film of Vaijanthimala. Lata Mangeshkar singing for Vaijanthimala. Our artist of the week, Lata Mangeshkar, next.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
10: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
11: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
12: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
13: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
14: Southall Travel, Atoll Protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
15: Nigel Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Nigel's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Nigel's Couture.
16: Be part of a historic grand opening.
17: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
16: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
17: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
19: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
18: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
19: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
18: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
19: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
20: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
21: Lyca Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले Lyca Gold और ऑनलाइन सुनो lycagold.com पे.
22: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Lyca Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक लता मंगेशकर सिंगिंग फॉर वैजयंती माला इन फिल्म अम्रपाली विद ऑफ कोर्स सुनील दत्त. होप यू आर एंजॉयिंग द ट्रिब्यूट. And I've got news for you. Lots of excitement going on in town. Many, many different kinds of activities going on, like Surinderella. Yes, Udit Narayan and Aditya Narayan, Sunil Grover coming, Kavita Krishnamurti coming. The Diwali Story. Watch the stage spectacle, Diwali Story at OVO Arena, Wembley on Sunday. That is 27th of September. Tickets from diwalistory.com. Exclusive radio partners, Leica Radio Network. And Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand, Ragasan. Details at leicaradio.com.
1: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious, everything for everyone.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
0: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
7: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
6: So where do we find something like that now?
7: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
0: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
8: पल भर के लिए
9: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए. संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Leica Radio Network.
10: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
11: Govind bolo Hari Gopal.
12: Krishna Janmano Anand Utsav. Ekaj Raat Ekaj Anubhav.
11: Nand ghera nand bhayo jay kare.
10: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardommedialtd.com.
12: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
13: What food make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
14: To IA Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
13: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
14: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: कॉन्सलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
15: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
16: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
17: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Yes, Vijayanti Mala and Dharmendra in Pyari Pyar.

टू बर्थडेज आई हैव टू अनाउंस एंड हमारे जगतार पाजी जगतार सिंह संगा ऑफ वैंकूवर कनाडा सेलिब्रेटेड हिज 83rd बर्थडे यस्टरडे हैप्पी बर्थडे एंड रानी जी ऑफ स्लाव स्लाव विल बी वेल लिट विद लाइट्स टुडे हैप्पी बर्थडे रानी जी एंड वी एंड विद प्यार ही प्यार थैंक यू आपने इतना बेशुमार प्यार मुझ पे बरसाया For the tributes that I've done. And Sandy Shah coming next. And Raj Patan on Laika Radio, Midlands. Bali Brahmbhatkar Namaskar.

0: visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
2: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. क्योंकि आ गया
4: खतरों के खिलाड़ी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी पावर्ड बाय स्टार टूर्स एसोसिएट स्पॉन्सर लाइन क्रॉफ्ट.
5: खतरों के खिलाड़ी
6: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
7: And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
8: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
7: Conditions apply. See online for details.
9: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
6: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
10: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 PM on Leica Gold. Make it a date.

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: ਦਰਦ ਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ
3: The wait is over Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic Avaara Pan 2
2: ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਆ ਪਰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ
4: ਤੋ ਫਿਰ
3: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
5: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
6: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02087677627
7: दिस इज सैंडी शाह ऑन गोल्ड ड्राइव
8: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: सफर नया पर साथी वही, आपके दिल के है जो करीब कहानी वही, जो दिल में बसा था वही नाम लाए हैं, अपनों को अपनों के करीब लाए हैं। 13 अगस्त से आपका उत्सव प्लस कहलाएगा।

0: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
1: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
0: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
2: What food में डिनर प्लान्स? थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
8: कृष्णना जन्मनो आनंदोत्सव, एक ज रात एक ज अनुभव।
7: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
8: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
10: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
11: Bikaner wala parampara bhi.
12: Famous chole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch aapka intezar kar raha hai. Milte hain 513-519 Cranbrook Road, Gansill, Ilford. IG26HA. Call 07555-506015.
13: Gold Drive with Sandy Shah.
14: Good night. Achha, good night.

0: सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
1: Dad,
0: what's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
0: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the YONO SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
0: Oi, balle balle! I'm gonna tell all my friends to download the YONO SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
3: पल भर के लिए
4: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. Ibrox Events presents the iconic duo Rafi and Kishore, featuring Fahad Yaf, accompanied by seven-piece band and Manisha Sharma. Golden era ke evergreen gaano ko relive kijiye. Sunday, 6 September, 5 p.m. at Hero Arts Center. Tickets start from just £25. Book tickets at herocentre.com. Box office ka number hai 02023737161.
5: Exclusive radio partners Leica Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल। I told

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: Good evening, I'm Peter Quinn. Starting on your roads, the A2 Watling Street westbound, still got two lanes closed for recovery work following an earlier accident. Long delays on your approach from Henhurst, it's queuing towards the incident which took place between Northfleet and the Bean interchange. The opposite side also congested back to Dartford Heath turnoff due to onlookers. Surrounding routes a lot busier than usual as well. The A312 the Parkway queuing southbound at Hayes, and the A406 North Circular Road eastbound at Golders Green, travel time of around 15 minutes. Towards Henley's Corner. To public transport, the Elizabeth Line got severe delays between London Paddington and Reading and between London Paddington and Heathrow Terminal 4. And that's your latest traffic and travel.
2: Need anything from Tesco? How about winning one of 40 family holidays to the Med plus €500 travel money? To enter, simply spend £25 or more with your club card to qualify. Now that's something worth checking in for. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only. Club card required. T's and C's travel restrictions and exclusions apply.
3: Like our gold.
4: This part of the show is brought to you by Star Plus.
5: Previously known as Utsav Plus.
4: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग After brushing, Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
9: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
10: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
11: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती।
12: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
11: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
12: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel, Awarapan 2.
11: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं।
13: तो फिर
12: witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Vakronia Media on Instagram.
14: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स। परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे, बायरन हॉल, हैरो लेजर सेंटर।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208 426-0678.
13: कॉन्सलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
15: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
16: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
17: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर, पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना, मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 02033-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
18: The Evening Show with Ashwini.
19: Hi, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Like a Gold Radio London and Greater Manchester and The Evening Show with Ashwini. Features बड़े ही interesting, amazing आप सभी के लिए।
20: This is Sandy Shah on Vintage Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप और हम साथ में मनाएंगे आज थ्रिलिंग थर्सडे 13th of August, शाम 7 से 10 बजे तक आपका हमारा साथ। पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब। नहीं नहीं नहीं, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, भीषण गर्मी, यस गर्मी, नो गर्मी, हाय गर्मी, यस आई टोटली अग्री। आप और हम सब लोग एक बड़ी सी क्रूज है, उसी में बैठे हैं। हम सब की फीलिंग एक जैसी है कि क्यों सावन क्यों नहीं बरसता है। हमें डर क्यों नहीं लगता है। बेताब का गाना याद आ गया ना। अब पिछली बार भी ऐसे हुआ था, मैंने वो गाना प्ले किया था और बादल आए थे, गरजे थे नहीं और बरसे थे भी नहीं, लेकिन आ तो गए थे कम से कम, थोड़ी ठंडक हो गई थी। तो देखते हैं अगर हम बारिश के गाने यहाँ से प्लेलिस्ट में लगाएं और वो कुछ तो ठंडक हमारे लिए लाए, है ना। आज हमेशा की तरह एक सवाल लाई, चटपटा सा सवाल है, मज़ेदार सा सवाल है और पूरी पूरी ईमानदारी के साथ आप सबको देना है उसका आंसर। लाइव थ्योरी बिल्कुल बढ़ते हैं आके धीरे धीरे, और घर घर की कहानी वो भी होगा। आप सबको बहुत पसंद आ रहा है नया सेगमेंट जिसका नाम है घर घर की कहानी, क्योंकि हमें अपने घर की बात कहीं करने मिलती नहीं है या हमें बहुत बात करने मिलती है, पर जो भी है, पर रेडियो पे हाँ मज़ा ही कुछ और है। तो मेरा सवाल, हम सभी सुपरमार्केट में जाते हैं, हम सभी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो सुपरमार्केट में जब जाते हैं और हमारे हाथ में केवल और केवल 2-3 सामान है, अब तो वो सेल्फ चेकआउट वाली चीज़ें आ गई इसलिए बात थोड़ी सी सिंपल हो चुकी है, लेकिन कई बार होता है कि नहीं है कुछ कुछ जगह, तो आपको क्यू में ही खड़ा होना पड़ता है। आपके आगे जब कोई पूरी ट्रॉली लबालब भरी और वो इंसान बिलिंग करने जाता है, पहला सवाल आपके जहन में क्या आता है? Have you played any tricks sometime? देखो मेरे पास में इतना ही सामान है, एंड सामने वाला was kind enough कि आपको जाने दिया। ये पूरी ईमानदारी से मुझे बताइएगा, या आप ऐसे हैं कि भाई आपने जो है आपकी ट्रॉली में बहुत सारा सामान है और आपको देख के किसी ने चेहरे बनाए। यार हम सबने फेस किया है ये, है ना, सभी ने देखा है कि बहुत सारा सामान और बिलिंग के लिए हम पहुँचे और हमारे आगे पीछे कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसके हाथ में सामान कम हो, तो वो जो नज़र होती ना, आँखों ही आँखों में इशारा हो।

0: मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में कारवां फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। मैंने पूछा है आपसे सवाल, बड़े मज़ेदार से आंसर्स आ रहे हैं कि भाई जब आप शॉपिंग ट्रॉली में जब सामान भर के आप बिलिंग काउंटर की ओर बढ़ते हैं और जब बहुत सारी वहाँ पे भीड़ दिख जाती है, चलो मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया अभी इसमें, कि वहाँ पे जब लंबी क्यू में खड़ा होना है तो पहला विचार आपके मस्तिष्क में क्या आता है एंड उस क्यू में खड़े खड़े आप क्या करते हैं। ठीक है, दस इज हेल्प। लोगों ने कहा कि थोड़ा और इसे ज़रा मज़ेदार बना दीजिए, तो चलो ठीक है, मज़ेदार ये है कि बताओ जब क्यू में खड़ा रहना पड़ता है तो क्यू में खड़े खड़े आप क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं, बताइए ज़रा।
1: This is Ashwini on Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: 0730099823. Note kia? Kitty party? Business meeting? Corporate event? Family occasion? Bas! WhatsApp kare Godfather and Co. Bar and Kitchen Co. Service? Excellent. Food? Amazing. Aur experience aisa ke aap khud bhi aayenge aur dusron ko bhi recommend karenge. Vivek House, Watford. Book on WhatsApp 07300.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 33 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। लाइफ थियरी के बारे में बात करें, कौन सी लाइफ थियरी सुनाने वाली है आज अश्विनी? तो आज हम बात करने वाले हैं द पिनाकियो थियरी। अब पिनाकियो, ये जो छोटा बच्चा है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये बच्चा जब जब झूठ बोलता था तब तक इसकी नाक यानी इसकी नोज लंबी होती जाती थी। ये चाहता था कि ये इसकी नोज, इसका नाक जो है वो नॉर्मल बाकी बच्चों के जैसे हो, लेकिन ये बच्चा जो है एक तो झूठ बोलता है और शॉर्टकट्स यूज़ करते रहता है अपनी लाइफ में, और इसका जो मेन इंटेंशन होता है, जो मेन टारगेट होता है कि उसकी नाक बाकी दूसरे बच्चों की तरह हो, तो वो हो ही नहीं पाती बिकॉज ये बच्चा जो है अपनी बुरी आदतों से सुधरता ही नहीं है। अब इसका हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना? बिल्कुल है। हम सभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छी चाहते हैं और पीसफुल रह के सुखी रह के जीना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ कैसे आएगा? अब ज़िंदगी में सक्सेस कैसे मिलता है? मेहनत से। देखिए, जितनी जल्दी पैसा आता ना उतनी जल्दी पैसा जाता है। अब जल्दी आना मतलब जहाँ पे आपने शॉर्टकट्स मार लिए। अब कोई भी चीज़ अचीव करनी है, पैसे के मामले में नहीं, रिलेशनशिप के मामले में भी होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता जब आपको अचीव करना होता है तो उसमें एफर्ट्स डालने होते हैं, शॉर्टकट्स वर्क नहीं करते। तो जहाँ पे आपको लगता है कि शॉर्टकट्स काम करेंगे और ज़िंदगी में मुझे जो पाना है तो वो नहीं हो सकता, इट डजंट वर्क। जिन्हें मिल भी गया होगा, बहुत जल्दी चीज़ें जैसे आती, कहते ना कि जितना जल्दी चीज़ें आई उतनी जाएंगी, क्यों? क्योंकि उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए थी, जितनी परिपक्वता चाहिए थी, परिपक्वता, आहा क्या वर्ड है, तो जितना आपको उसके पीछे मेहनत करते हुए ज़िंदगी में एक एक टारगेट को अचीव करना चाहिए था वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर ये था ही नहीं कहीं। तो जब कुछ पाना चाहिए ज़िंदगी में उसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा, और ये अगर एफर्ट लेने की तैयारी नहीं है ना आपकी, तो पिनाकियो की तरह शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, लेकिन सही मायने में जो आप सक्सेस चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो पिनाकियो, उसका भी यही हुआ कि उसकी नाक लंबी होती गई, लेकिन जब उसके समझ में आया कि अब ये झूठ, ये शॉर्टकट्स ज़िंदगी में नहीं चलेंगे, भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो जब इसके समझ में आए चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ठीक हुई। आप भी ज़रा ध्यान से सोचिए, रिश्ते खराब हुए हैं क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट्स नहीं डाले गए थे, उन रिश्तों की जो ज़रूरतें थी वो हमने पूरी नहीं की। और सक्सेस इन स्टडीज़, करियर, डिसिप्लिन लगता है भाई, बहुत काम करना पड़ता है। अगर सक्सेसफुल हो गए तो बहुत बढ़िया, पिनाकियो और आपका तो दूर दूर तक संबंध है, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल रहा है जैसा चाहिए तो कुछ तो मिसिंग हो रहा है बॉस। वो क्या मिसिंग हो रहा है मुझे मत बताइए, आप ढूंढ लीजिए और आपकी पिनाकियो थियरी सफल। कैसी लगी आज की ये थियरी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यादों की बारात में अगला गीत आप सभी के लिए,
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी। बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 12।

0: Days for London at Breakfast and Drive.
1: Need anything from Tesco? How about winning one of 40 family holidays to the Med plus €500 travel money? To enter, simply spend £25 or more with your club card to qualify. Now that's something worth checking in for. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only. Club card required. T's and C's travel restrictions and exclusions apply.
0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
1: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक
7: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा
6: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947
8: Two businesses.
9: Same town.
8: Same service.
9: One appears on page one of Google.
8: The other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
3: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
4: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
5: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
6: नाम क्या है?
7: हमजा अली मजारी।
8: Durandar, 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold. Title sponsor, Watchdog Security. Associate sponsor, Lemfi.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
10: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.

0: This is Ash Winnie on Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128.68 इंडियन रुपी, 374.57 पाकिस्तानी रुपी, 449.89 श्रीलंकन रुपी, 165.62 बांग्लादेशी टाका, 88.27 अफगान अफगानी, 1.34 यूएस डॉलर्स, 174.39 केनियन शिलिंग, 63.56 मॉरिशियन रुपी.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.15 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets. One of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 7:50, इट्स 50 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. तो थियरी आप सभी को पसंद आई है, पिनोकियो थियरी. जी, किसी ने मेरा करेक्शन भी किया है व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउंसिएशन. होता है. अब हम हर जगह राइट हो गए तो कैसे मजा आएगा. ओके, मैंने आप सबसे सवाल पूछा था, लेकिन उसके पहले ये थियरी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी ऑन माय इंस्टाग्राम, दैट इज रेडियो वाली अश्विनी, जहाँ पे हर रोज जो मैं थियरी सुनाती हूँ वो सारी थियरीज आप वहाँ पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं. मैंने पूछा था कि भाई जब लंबी क्यू होती है, हम जब बिलिंग करने जाते हैं और जब क्यू में खड़ा होना होता है, तो आई मीन एक्चुअली मतलब हमें होता क्या है. एक तो बेसिकली ऐसे ना टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार देखो कितनी लंबी क्यू, अब खड़ा होना पड़ेगा. अब ऐवी मतलब मूड खराब हो जाता है, पहली चीज़. दूसरा, अच्छा ठीक है, अब खड़ा ही रहना है क्यू में, तो निकालो फ़ोन, जपड़ जपड़ जपड़ जपड़ देखते रहो, अलग अलग विंडोज़ जाके देखो, अलग अलग ऐप्स देखो. ठीक है, नहीं कुछ भी तो चलो आयल के पास में खड़े रहेंगे दूसरे, तो वहीं पे फिर ताका झाकी हो जाए, अच्छा क्या क्या दिख रहा है. और कोई इंसान किसी एक पैर पे जोर डाल के खड़े रहेंगे, फिर कभी दूसरे पैर पे, फिर पैरों को हिलाएंगे, फिर एवी इरिटेशन जो है अपना खुद को दिखाते रहेंगे या उनके साथ में जो भी इंसान आए हैं उनको इरिटेशन जताते रहेंगे, बताते रहेंगे कि देखा कितनी लंबी क्यों, देखा कितनी लंबी क्यों, अरे यार है तो है. ठीक है, चलिए इस आवर के आखिरी गीत की तरफ चलते हैं, आर डी बर्मन की आवाज़ में महबूबा महबूबा.
0: Ashwini, brightening up your weeknights.
3: This part of the show is brought to you by Star Plus.
4: Previously known as Utsav Plus.
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4.

0: वेलकम, दिस इज द सेकंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड सारे लेट कमर्स। जितने लोग लेट आए आप सबको लगने वाला है फाइन, अभी बस देखो अभी क्या फाइन लगाते हैं यहाँ पे। हाँ, और लेट आके फिर माफ कर दीजिए अश्विनी जी, जो सजा मिल जाए सजा क्या देंगे भाई। आप आ रहे हो, हमारे शो को सपोर्ट कर रहे हो, सुनते हो, इंटरेक्ट करते हो, इससे अच्छी और बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है ना। मेरा इंटेंशन यही होता है कि भाई शाम में जब आप सभी लोग आते हैं तो इस शो के साथ में ज़रा स्माइल कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए एंड मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तो घर घर की कहानी के लिए क्या आप सब हैं तैयार? आज मैं क्या पूछने वाली हूँ, वी आर एशियंस एंड वी आर वेरी प्राउडली सेइंग दिस एवरीवेयर, हम जहाँ से जिन किसी एशियन कंट्रीज से आते हैं वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होती है, मेहमान जब घर में आने वाले होते हैं उनके लिए भाई अलग क्रॉकरी क्यों होती है, अलग प्लेटें होती हैं, अलग ग्लासेस होती हैं। अब प्लेटें क्या होता है? प्लेट्स, जी हाँ, ज़रा फॉर्म में आ जाते तो हम भी बोल लेते हैं ना शब्दों को इधर से उधर, ऐसे ही होता है बस। तो ये अलग प्लेट्स, अलग ग्लासेस, अलग क्रॉकरी, अलग ट्रे, अलग मेन्यू, क्यों क्यों क्यों? सारी महिलाएं अगर इस चीज़ का जवाब देना चाहें तो मोस्ट वेलकम कि ऐसा क्यों करते हो आप? हाँ, अब कई उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी, मैडम आप भी अपने घर में करती होंगी ये क्रॉकरी के मामले में, आप भी जवाब दो ना पहले। हाँ, आओ घर घर की कहानी में मेहमानों के लिए अलग क्रॉकरी और अलग मेन्यू क्यों बनता है? एक पाउंड के बदले आप सबको मिलेंगे 128 इंडियन रुपीस एंड 25 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच।

0: Dad, Dad, Dad!
1: What's wrong, beta?
0: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
1: I will run down to the money exchange now.
0: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
1: Oi, bale, bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK is regulated by the FCA and PRA.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
6: Jaam chalne lage.
5: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड।
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
10: मरीज इश्क का क्या है, जिया जिया।
11: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
12: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:38। आप सभी जानते हैं 35 के आगे मेरी गिनती में प्रॉब्लम है हिंदी में, इसीलिए मैं 38 बता रही हूँ। इट्स 8:38। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। 13th of August आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। थ्रिलिंग थर्सडे में आप सबको सुनाया कतरा कतरा। ओ माई गॉड, व्हाट अ लवली ट्रैक। आशा भोसले ने जिस तरीके से ये गाया है एंड द गॉर्जियस द ब्यूटीफुल रेखा जी पे फिल्माया गया था। और उसके पहले और एक बढ़िया मेलोडियस ट्रैक। अच्छा, अब तक तो आप लोगों की समझ ही गया ना कि प्लेलिस्ट जो यहाँ पे लगती है वो मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट होती है, मतलब मेरे जो पसंदीदा गीत होते हैं। तो यहाँ पे हंसते जख्म से तुम जो मिल गए हो, लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अच्छा, क्या आप लोगों ने ऐसे किया है कि एक तो देखो हम सभी ना फिल्मी हैं, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वी ऑल एशियंस ना वी आर फिल्मी। मैं और सैंडी बात कर रहे थे व्हेन आई केम टू द स्टूडियो एंड ही सेड कि तुम्हें किसी ने बताया कि तुम ड्रामा क्वीन हो। मैंने कहा नहीं, तब तक मेरी एक्टिंग सामने नहीं आई थी सबके। नाउ दैट पीपल कैन सी मी ऑन पर्दा देन दे नो कि हाँ अच्छा इसके एक्टिंग स्किल्स एंड एक्चुअली आप लोगों को ना यहाँ पे एक तो जो मस्ती चलती है, गपशप चलती है एंड सैंडी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। हाँ, आपको उनकी आवाज़ से अगर ऐसा लगता होगा कि बड़े सीरियस इंसान है, यस ही इज़ अ पर्सन, नो नॉनसेंस पर्सन है, लेकिन उनकी आँखें जिस तरीके से यहाँ से वहाँ वो रोल करके अपने, मतलब बोलते नहीं उनकी आँखें बोल देती हैं। तो ये इतना बड़ा मज़ा है ना हमारे यहाँ पे स्टूडियो में जब हम मिलते हैं प्रेजेंटर्स, मज़ा मस्ती होती है, इंटरेक्शन होता है, गपशप होती है, जो शोज़ में होता है वो यहाँ पे डेफिनेटली बिहाइंड द माइक भी यहाँ पे चलती रहती है गपशप। सो एनीवेज आगे बढ़ेंगे और भी बढ़िया बढ़िया गीत आप सबके लिए लाइंड अप है बाबा यहाँ पे। एपिसोड नंबर 29 आ चुका है, इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, होस्टेड बाय हमारे अपने रवि जी, रवि शर्मा जी। सो रवि शर्मा स्पीक्स टू मिस्टर प्रवीण पटानी, डायरेक्टर ऑफ मीना ज्वेलर्स, अबाउट हाउ गोल्ड प्राइसेस आर अफेक्टिंग कस्टमर्स एंड परचेजिंग डिसीजंस। काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें डिस्कशन हुआ है, तो ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
3: This is Ash Winnie on Leica Gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
7: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
8: Hey!
7: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposable available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
11: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
12: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट,
0: Chemicals Heat. ये है Jaimin Foods का Vibe Check.
6: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
0: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
8: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, we discuss astrology, truth or trap, hosted by Kush, who talks to an astrologer and palm reader.
12: Let's talk about the next generation of South Asians, because whether it's astrology, whether it's anything to do with gemstones, lucky color, lucky days, palmistry, matching charts, any of that, it's not going anywhere.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.66 इंडियन रुपी, 374.55 पाकिस्तानी रुपी, 449.85 श्रीलंकन रुपी, 165.61 बांग्लादेशी टका, 88.25 अफगान अफगानी, 1.34 US dollars, 174.4 Kenyan shilling and 63.56 Mauritian rupee.
0: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £104.15 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: इस आवर के आखिरी गाने की तरफ चलते हैं, तो पायल एंड सैम, दिस इज डेडिकेटेड टू यू, इट्स योर एनिवर्सरी, एंजॉय।
1: नॉनस्टॉप क्लासिक्स, क्लासिक्स लाइक अ गोल्ड। This is Ash Winnie on Leica Gold.
0: Leica Gold.
3: This part of the show is brought to you by Star Plus.
4: Previously known as Utsav Plus.
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन। श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
8: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
4: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
9: Usse mujhe chua, par apna aaya nahi.
10: To phir
4: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
1: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
10: The Evening Show with Ashwini.

चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। नियाली 12 मिनट हो रहे हैं 9 बज के। It's going to be 12 minutes past 9 after we need to tune in here like a gold radio in London and like a radio in Greater Manchester. So, Barsaat film se sunaya aap sabhi ko Kumar Sanu and Alka Yagnik ki awaaz mein love tujhe love main karta hoon, uske baad main Aasha Bhosle ki awaaz mein Sanam teri kasam, again one of my favorite tracks. तीसरा गाना जो भी आ रहा है वो भी मस्ती भरा गीत है। अब जो लोग सोच रहे होंगे कि बस मतलब विद इन फ्यू मिनट्स हम अश्विनी को कहेंगे टाटा बाय बाय, हाँ गलती भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर कि आप सोचोगे कि बस अब जो है रेडियो बंद करेंगे, तो करोगे ही नहीं ना, करोगे कैसे बंद, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गाने आप सबके लिए लाइंड अप किए हमने यहाँ पे। अच्छा, तो सेकेंड आवर मैंने आपसे एक घर घर की कहानी में पूछा कि क्यों ऐसा होता है हमारे यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में कि जो मेहमान आते हैं तब उनके लिए अलग क्रॉकरी और स्पेशल मेन्यू बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली मेहमान है, इसमें दो तीन तरीके की चीज़ें होती कि भाई हम महिलाएं जो हैं हमारे घर पे जब गेस्ट आते हैं हम उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। एज ह्यूमंस हम सभी चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई ये जताए बताए कि आप स्पेशल हो, है ना। सो इसीलिए जब मेहमान नवाजी हम जो कहते हैं तो मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती, बिकॉज उस इंसान को वो सारे जेस्चर्स हम अपने जेस्चर्स से ही दिखाते हैं बेसिकली कि भाई देखो अलग प्लेटें हैं, अलग गिलासेस हैं, अलग जो आपके लिए खाना बनाया जा रहा है, तो अच्छा लगता है किसी के लिए भी। और ऑब्वियसली मेहमान रोज़ रोज़ तो नहीं आते हैं, इसीलिए भी

0: वाओ, क्या बढ़िया गीत था। लता मंगेशकर हैं हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक, उन्हीं का गाया हुआ बंदिनी फिल्म से सुनाया ये गीत। मैंने भी ये गीत एक्चुअली बहुत टाइम बाद सुना, मैंने सोचा क्यों ना आप और हम साथ में आर्टिस्ट ऑफ द वीक में ये गीत सुन लेते हैं। अगला ट्रैक सुरेश वाडकर की आवाज़ में सुना रही हूँ आप सभी को, एंड आई एम श्योर आप लोग कहेंगे क्या बात है, वाह मजा आ गया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Sun.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Like a Gold.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Dad,
5: what's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
0: One performer,
6: countless personalities,
0: a whole universe of entertainment.
6: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
6: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
10: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avarapan 2.
9: उसने मुझे छुआ, पर अपना यानी।
11: तो फिर।
10: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
12: Ghazal.

0: Puzzle. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.68 इंडियन रुपी, 374.64 पाकिस्तानी रुपी, 449.9 श्रीलंकन रुपी, 165.64 बांग्लादेशी टाका, 88.28 अफगान अफगानी, 1.34 यूएस डॉलर्स, 174.37 केनियन शिलिंग, 63.56 मॉरिशियन रुपी.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.15 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए भाई चलिए, अब जरा एक बार टाइम चेक हो जाए. 9:40, इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दुनिया जहां में आप जहां पे भी हमें सुन रहे हैं, तहे दिल से कहना चाहते हैं आप सभी से धन्यवाद. आप सभी ने हमारा शो ट्यून इन किया और सपोर्ट किया मुझे. सो मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम 7 से 10 आप सुनते हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी. थ्रिलिंग थर्सडे मनाया आप और हमने साथ में. कल होगा फैंटास्टिक फ्राइडे. ये देखो फ्राइडे अभी से शुरू हो गया ना, तो फ्राइडे जनरली होता ही है. अगर हमारे नए नवेले लिसनर्स जो हैं, एक तो उनको धन्यवाद कि वो ज्वाइन हो रहे हैं इस शो के साथ में. एंड फैंटास्टिक फ्राइडे ये होता है कि लोग जल्दी से खाना खा लेते हैं. अब फैंटास्टिक फ्राइडे और खाना खाने का क्या संबंध है? तो क्या होता है ना कि आरजे अश्विनी उस दिन बन जाती है डीजे अश्विनी और सारे ऐसे गाने होते हैं जहाँ पे दिनक दिन मतलब डांस होता है. सो तैयार रहिएगा फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए, खूब मस्ती होने वाली है. बिकॉज फ्राइडे है ना, तो फुल ऑन माहौल, मतलब वीकेंड माहौल होने वाला है. दो बहुत ही फैंटास्टिक ट्रैक्स आपके लिए. तो मैं आज आपके लिए दो गाने में जो प्ले करी उसमें से पहला दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. आई जस्ट लव दैट ट्रैक, आई डोंट नो वाई. आरती मुखर्जी की आवाज़ में मासूम फिल्म से दो नैना एक कहानी. तो जो लोग सोने जा रहे थे रेडियो बंद करके, मुझे पता है अभी नहीं जाओगे. एंड द लास्ट ट्रैक इज थोड़ा डांस कर लें क्योंकि फैंटास्टिक फ्राइडे की झलक मिलनी चाहिए. मुझे 9 लाख दिला दे. सो गोल्ड नाइट हमारी वन नाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा. लाइका रेडियो 90, लाइका रेडियो पंजाबी एंड लाइका गोल्ड 2. एंड मैं आप सबसे मिलने वाली हूँ कल शाम 7 बजे फिर से. सो अपना खूब ख्याल रखिए, प्लीज पानी पीते रहिए. कल फिर से धूप है लेकिन शाम में होने वाली मस्ती. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.
0: ये है लाइका गोल्ड.
4: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस. विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल.

0: the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
4: डैड
5: व्हाट्स रॉन्ग बेटा?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
10: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
9: डेजर्ट सफारी,
10: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
9: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
10: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
11: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
12: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
13: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
12: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
13: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
12: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
13: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakrania Media on Instagram.
14: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959 250376.

0: Laika Gold.
1: Dad.
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271935।
5: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
6: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने कुवारा हो छो।
7: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानो बंद करो।
5: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसलीफ, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल, at all protected.
9: You know how fans shout at football matches?
10: Oh, wake up!
9: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: Are we there yet?
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
12: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simzy before we left London.
12: Simzy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
14: T's and C's apply.
15: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Your nightly hits. Gold Nights on Like a Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Backed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
10: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।